बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से कड़ी दी सुई दी मुताबक 7 बज रहे ने और 7 बजते ही बेला हो जाता है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता शुभदेव अधिकारी पश्चिमी बंगाल के नवे मुख्यमंत्री होंगे। तमिलनाडु में सी जोसफ विजय की अगुवाई वाली टीवीके पार्टी राज में सरकार बनाने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की मजबूती और सुरक्षा सिर्फ सरहदों की रक्षा तक सीमित नहीं सगो समाज वातावरण और इसके नागरिकों की सुरक्षा नाल जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय महिला कमीशन ने औरतों खिलाफ किन्होंने जिनसी जुर्म संबंधी मामलों में तेजी नाल सुनवाई सख्त निगरानी और पैरोल की पाबंदी की मांग की है। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक भाईवाल वजो दहशतगर्दी का मुकाबला करने लई दुवल्ले सहयोग की महत्ता ते जोर दिता है। भारत और आस्ट्रेलिया विचकार नवी दिल्ली रक्षा 10वीं रक्षा नीति की गलबात हुई है। पंजाब कर विभाग ने एक संगठित फर्जी बिल्डिंग नैटवर्क का सफलता नाल पर्दाफाश करदिया लुधियाना की एक फर्म के डायरेक्टोरेट नूं वड्डा GST घोटाला करन दे दोष विच गिरफ्तार किया है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज नाल मुलाकात करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी रोकण संबंधी कानून दियां वख-वख मदां ते विचार वटांदरा कीता है। पंजाब सरकार ने यूनिफाइड सैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करके माली शासन विच एक वड्डा मील पत्थर कायम किया है। अते भारत की सिमरनजीत कौर शिंगाई विच तीरंदाजी विश्व कप का रिकवर व्यक्तिगत मुकाबले के सैमीफाइनल विच पहुंच गई है। ते इसी हुण तक दियां FM न्यूज़ हेड

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: माताओं को बहनों को नमस्कार प्रणाम सलाम नमस्ते सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। मेरा नाम विनोद कुमार, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। वैसे मैं रहने वाला हिमाचल प्रदेश का हूँ और इस प्रोग्राम को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें हमारे मैसेजेस सुनने को मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के संदेश सुनने को मिलते हैं, बहुत आनंद आता है। और नई तकनीक के साथ ही रेडियो चल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिए हैं रेडियो ने, जिनके बारे में हम जितना भी बोलेंगे बहुत कम है क्योंकि बहुत हमारे जो सीनियर है इस रेडियो के श्रोता और रेडियो को जो चलाने वाले लोग बहुत अच्छे अच्छे, और इनमें इतने ही अच्छे हमारे रेडियो आरजेज, हमारे बहुत अच्छे प्रेजेंटर, तो इनको सबको श्रेय जाता है, सबको बधाई। आज सबका एक तरह से सोच लीजिए कि जन्मदिन है क्योंकि ये हमारा आकाशवाणी परिवार, सबका पूरा परिवार, हम एक साथ जब जैसे ही सुबह का सूरज आता है ऐसे ही रेडियो में वो ट्यून बजती है। थोड़ी सी मैं आपको वो रेडियो की ट्यून बजाकर सुनाता हूँ, बांसुरी में सुनाने की कोशिश करूँगा, अगर आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर बताइएगा। वैसे तो वो क्ले वायलिन में बजी है, आपको पता ही है सबको।
1: जी, जी जी
0: आपको बताने की वैसे ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं, पर मैं बांसुरी में बजाऊँगा और उसके लिए तानपुरे की भी आवश्यकता होती है, पर अभी मेरे पास सिर्फ बांसुरी है तो सिर्फ बांसुरी में वो ट्यून रेडियो जैसे खुलता है स्टेशन वो सुनाऊंगा। और फिर एक और ट्यून है जो आकाशवाणी जलंधर का ही बहुत प्यारा प्रोग्राम है खेती बाड़ी, ये दो ट्यून्स मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा
1: जी।
0: तो आज का बहुत शुभ अवसर है, ये शुभ मौका है, खुशी का दिन है और सबको बहुत बहुत ज्यादा बधाई। चढ़दी कला से ये स्टेशन चलता रहे
1: जी।
0: पंजाबी विच वैसे मैं बहुत घट बोलदा पर फिर भी कोशिश कीती है ते
1: नहीं कमाल बोल दियो जी।
0: रेडियो दे विच में सॉरी बांसुरी दे विच ट्यून सुनांदा हां जेड़ा रेडियो खुलदा है जदों।

तो ये तो होगी जी रेडियो खोलने की ट्यून। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक बहुत ही प्यारी और प्रसिद्ध ट्यून। अब ये तो मुझे याद नहीं, आपको अगर पता हो तो मुझे जरूर बताइए कि ये बांसुरी किन्होंने बजाई है उस ट्यून में। तो मैं आपको सुनाता हूँ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा

102.7 FM रेनबो ते सुन रहे हो अपनी दोस्त होस्ट आर्जरी आनू इन द प्रोग्राम पंजाबी तड़का जिदे विच पंजाबी गाणियां दा तड़का लावांगे नाल ही नाल तुहाडी गल्लां बातां वी सुणांगी तुहाडे तों आपां फरमैशी गाने ते तुहाडे जरूर प्ले करांगे नाल ही नाल तुहाडे दिल दी जिहड़ियां गल्लां ने या साडे दिल दीआं जिहड़ियां गल्लां ने ओह वी तुहाडे नाल सांझियां करांगे इन द प्रोग्राम पंजाबी तड़का ते जिवें कि तुहानूं सारिआं नूं पता ही है कि अज असीं आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो दे 90 साल पूरे हो गए ने ते ओहदी सैलीब्रेशन कर रहे हां बर्थडे मना रहे हां ते नाल ही नाल कल मदर्स डे वी है सो अज दा जिहड़ा दिन है ना वो बहुत स्पैशल है सो अज दे जिहड़े सवाल जवाब रहणगे तुहाडे नाल गल्लां पता रहणगियां इहदे आले दुआले ही रहणगियां ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ 0181 2342 1074 ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ

0: वाणी आकाशवाणी।
1: वेल बिल्कुल वापस है आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ। सवाल पूछ चुके हूँ मैं आपसे बलवाने के लिए आपको बॉलीवुड सरताज और बहुत सारे जवाब भी आ रहे हैं। 9868107070 नंबर है हमारा। और सवाल बड़ा आसान था कि शिवाजी छत्रपति के जो बड़े बेटे हैं वो कौन है, और उनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने। एनीवेज चलिए कुछ और बात कर लेते हैं भाई। टॉप बॉलीवुड ग्रॉसर्स ज़रूर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मूवीज है जिन्होंने बहुत बहुत बढ़िया ब्लॉकबस्टर कमाई की है। तो धुरंधर द रिवेंज तो है ही, बॉर्डर 2 भी पीछे नहीं रही, और भूत बंगला की 234 करोड़ की अब तक कमाई हो चुकी है। रोमियो भी 118 करोड़ कमा चुकी है, और राजा शिवाजी 50 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, और अंदाजा है कि इससे कहीं ऊपर चली जाएगी। वेल आजकल टॉक ऑफ द टाउन कौन है? रणवीर सिंह। जी हाँ, रणवीर सिंह बन चुके हैं न्यू बॉक्स ऑफिस किंग, और प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि उनको बड़ी बड़ी मूवीज में लेने के लिए। मिड बजट रोमांटिक फिल्म्स स्ट्रगल कर रही हैं थिएटर्स पर, और इसी के साथ ही ओटीटी सक्सेस बहुत हेल्प कर रहा है जो लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, उन सभी के लिए। और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में बहुत बड़ा ह्यूज क्राउड देखने को मिल रहा है। एंड द ट्रेंडिंग स्टार्स आर रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी एंड रितेश देशमुख। वेल बॉलीवुड की और बहुत सारी गॉसिप्स के साथ और बॉलीवुड सरताज के साथ बिल्कुल वापस आऊंगी मैं आप सभी के लिए। अभी नेहा कक्कड़ की वॉइस में वन ऑफ माई वेरी फेवरेट नच दी।

0: सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: वेल जी, समय हो चला है आप सभी को बताने का कि कौन है आज का बॉलीवुड सरताज। तो आज के बॉलीवुड सरताज बनते हैं आप सभी, क्योंकि भाई आज थोड़ा टाइम के पाबंदी की वजह से किसी से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन बॉलीवुड सरताज आप सभी हैं। बसंत तोमर जी, आपसे बात हुई थी एंड आप बनते हैं बॉलीवुड सरताज। साथ ही पंकज हैं अमरावती से, जिन्होंने सही जवाब देकर बन जाते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। और सलीम मलिक मेरठ से, साथ ही प्रवीण चौहान, इन्होंने सही जवाब दिया है। और सांभाजी राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से, ये सभी हमारे बनते हैं बॉलीवुड सरताज। और सही मायने में आप जब हमसे जुड़ते हैं दिल से दिल का रिश्ता बना के, तो डेफिनेटली हमें भी बहुत अच्छा लगता है। एफएम रेनबो सांभाजी, ये शाहजी भोसले उमेश कुमार खयाला से, इन्होंने हमें मैसेज किया है। मोहम्मद इम्तियाज साहब, आप भी बनते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। और साथ ही ऋषु कटारिया, पवन कटारिया पंजाब से, और इन्होंने सही जवाब दिया है कि सांभाजी महाराज, ये शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे और जिनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वेल एनीवेज, एंड अब समय हो चला है कि हम आगे बढ़े अपने बॉलीवुड के गॉसिप्स को लेकर। और बॉलीवुड गॉसिप्स में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। देखिए, बहुत सारी उठा पटक है और बहुत

सारी न्यू रिलीजेस है जो अभी आने वाली हैं। कह रहे हैं कि भाई सलमान खान भी दस्तक देने वाले हैं बहुत जल्द अपनी फिल्म को लेकर, और उनकी फिल्म के बहुत सारे कयास लगा जा रहे हैं। मातृभूमि शायद इसको लेकर वो बहुत जल्द OTT पर आने वाले हैं। एंड इसी के साथ ही रणवीर सिंह, जैसे कि हमने आपको बताया कि सभी प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि उनके साथ काम करें, और बड़े दुख की बात है कि बड़ी सारी रूमर्स भी फैल रही है भाई हमारे शक्ति कपूर साहब, परमात्मा उनकी उम्र को लंबा करे, और कैसे एक न्यूज़ फैल गई उनके ना रहने की, जो कि बहुत बड़ी बात है। जब तक आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर ना हो, प्लीज़ किसी के लिए इस तरह के बातें मत कहिए, और खुद सोचिए आप, वो भी इंसान है, उनकी फैमिलीज है, उनको कैसा लगता होगा जब इस तरह की चीज़ें आती है। वेल एनीवेज, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। FM रेनबो 102.6 MHz आकाशवाणी दिल से दिल तक। इसके बाद लाइंड अप प्रोग्राम्स है आप सभी के लिए, जिसको आप इंजॉय करेंगे। फिलहाल मुझे यानी आरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार, मस्ती की पार्टी आप सभी के लिए रहेगी चक दे इंडिया से नरेश कुमार की वॉइस पे। एंजॉय कीजिए।

0: 102.7 FM Rainbow, this is on room program Home Sweet Home, apni dost te host RJ Riya de naal. This program de vich na ajj aapa gal karange mummy di sass di, matlab saadi ghar di jo vi ladies hundiyan ne unna di gal baat karange, unna di health di gal baat karange, unna de emotions di gal baat karange, te oh saadi ghar nu actual je kivein ghar bana de, kyunki ghar kehnde ne ki aurtan naal hi hunda hai. So ajj unna di hi gal baat karange program Home Sweet होम दे विच।
1: ए गीत जुड़िया है घरों बाहर रहिंदे एक आम इंसान दे नाल, उहदे बचपन नाल, उहदी मां नाल, भैण नाल, नानी नाल, ते उहदियां बचपन दियां खेडां जिवें आटे दी चिड़ी, ते हुण जदों बाहर आ गया कल्ला आटा गुन्नदा ते याद करदा उस आटे दी चिड़ी नूं जिहड़ी कदे उहदी मां बना

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई

आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.7 एफ एम रेनबो तुसी इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज अपनी दोस्त होस्ट आर्जे रिया दे नाल। ते मिड डे मेलोडीज दे विच यार वन ऑफ माई फेवरेट प्रोग्राम्स क्योंकि पुराने गाने मेरे दिल के बहुत करीब ने एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी पुराने गाने सुनते हैं जिन्होंने आदत है ना पुराने गाने सुनने की वो एक दिन भी पुराने गाने पुराने बॉलीवुड गाने सुने बिना नहीं रह सकते। सो ये प्रोग्राम की असी थोड़े लिए ही लेके आए कि तुम अपने फेवरेट जो पुराने बॉलीवुड गाने ने उन्हें जो गोल्डन पीरियड

एहसान तेरा होगा मुझ पर। यार लिरिक्स भी इन्ने सोहणे ने गाने दे, उनां दे म्यूजिक भी इन्ना बा कमाल है, ते मोहम्मद रफ़ी उनां दी आवाज़ ते चलो उमदा है ही, उहदा ते कोई चलो पैरेलल्स ही नहीं है। ते अगला गाना जिहड़ा हैगा उह वी उहदे वी कोई पैरेलल्स नहीं हैगे, उनां दे जिहड़े सिंगर ने उनां दे वी कोई पैरेलल्स, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई उनां दे लागे बन्ने नहीं खड़ सकदा। उनां दी आवाज़ इन्नी सोहणी है ते गाना उत्तों वी ज़्यादा। बहुत ही प्यारा गाना तुहाडे लई पेश कर रही हां।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार

हर रात एक नाम याद आता है, हर रात एक नाम याद आता है, कभी सुबह तो कभी शाम याद आता है। सोचता हूँ कर लूँ दूसरी मोहब्बत, सोचता हूँ कर लूँ दूसरी मोहब्बत, लेकिन

फिर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। ये खूबसूरत जीयां लाइना मिर्जा गालिब जी दियां लिखियां हुईयां। अच्छा, तुहाडे चों पता नहीं किन्नियां नूं पता होएगा कि कल मदर्स डे है, माँ दा दिन। पर माँ दा वैसे कोई दिन नहीं हुंदा, माँ दा दिन तां हर दिन हुंदा है, क्योंकि जिंदगी माँ तो बिना जड़ी है ना वो अधूरी है। क्योंकि दुनिया विच एक माँ ही है जड़ी हर एक तरीके दे नाल अपने बच्चे नूं जड़ा है वो हर एक जगह जड़ी वो भर सकती है। मतलब अपने बच्चे नूं कमी नहीं महसूस होन दे सकती किसी विधि भी, चाहे माँ बाप भैन भरा किसी भी चीज़ की कमी। परमात्मा ने माँ नूं एक इदां दी बख्शिश नाल नवाजिया है। जी हाँ, तो इदां ही किसी ने एक बहुत सोहना जिहा मैसेज भेजा, और किन्हां ने भेजा मैं

मुद्द तों बाद मेरी आँखों में आंसू आए। मेरा आईना भी अब मेरी तरह पागल है, आईना देखूं तो नज़र तू आए। बशीर बद्र जी दियां ये खूबसूरत जी लाइना। खैर फिलहाल सुनते हैं इस प्रोग्राम के आखिरी ट्रैक नू, तो उस तो बाद ठीक 3 बजे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर दिल्ली तो 4 बजे फिर साढ़े नाल मतलब थोड़े नाल मेरी मुलाकात होएगी, जिद असी करांगे बहुत सारिया गल्लां बातां। तो तुसी तैयार रहियो नंबर दे नाल ते अपने फोन दे नाल। फिलहाल सुनते हैं इस प्रोग्राम का आखिरी ट्रैक ते नाल ही फिर उस तो बाद चलांगे दिल्ली वल जी रेडियो डॉक्टर दे विच। देखदे आज की खास है साढ़े वास्ते।

0: कॉल इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज एक नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी श्रोताओं का जो रेडियो डॉक्टर से जुड़ते हैं, अपनी समस्याएं यहां हमारे रेडियो डॉक्टर के सामने रखते हैं और पूरी तरह से संतुष्ट होकर आप हमें फीडबैक देते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कितना पसंद आता है। तो आज एक नया अंक है, एक ऐसी समस्या है जिससे हम थोड़ा बहुत डरते हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम है। और स्पाइन की प्रॉब्लम से या मेरा ये है कि किसी भी समस्या से नहीं डरना है, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आपके साथ है और जब तक रेडियो डॉक्टर आपके साथ है, आपका एक स्पेशलिस्ट यहां पर डेली रहेगा, ओपीडी खुलेगी और आपकी समस्याएं यहां सुनी जाएंगी। और सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी, उसका एक जवाब, सही जवाब आप तक पहुंचेगा। तो आज भी हम यही चाहते हैं कि आपका साथ हमें मिले इस कार्यक्रम में, जैसे आप रोज हमारी हौसला अफजाई करते हैं, आज भी करें, क्योंकि आज के हमारे स्पेशलिस्ट बहुत खास हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर H.S. छाबड़ा। आप एक बहुत ही सीनियर जाने माने स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं। आप डायरेक्टर हैं स्पाइन एंड रिहैबिलिटेशन में श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, साथ ही साथ आप प्रेजिडेंट हैं स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी में, चेयरमैन हैं स्पाइन वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन में। तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर छाबड़ा, आप स्टूडियो में आए हैं समय निकालकर। नमस्कार।
1: धन्यवाद शालिनी जी, नमस्कार और सारे श्रोताओं को प्यार भरी नमस्कार।
0: बहुत समय बाद डॉक्टर साहब यहाँ आप आए हैं। काफी बार मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट कर चुकी थी, लेकिन हमें पता है सर आप सर्विस पर हैं और पूरी तरह से आप डिवोटेड हैं अपने पेशेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हमारे उन तमाम श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं उनको भी थोड़ा सा लाभ पहुंच पाए, तो आज आप आए हैं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चाहेंगे कि एडवांस स्पाइन केयर एंड रिहैबिलिटेशन पर आप जानकारी दें हमारे श्रोताओं को। और चैनल भी वही है आपका पसंदीदा एफएम रेनबो, और ऐप भी वही है प्रसार भारती का ऐप न्यूज ऑन AIR। तो आप भी वही, मैं भी वही, बस हमारा रेडियो डॉक्टर जो है वो

0: खास है। तो डॉक्टर साहब, ये जो स्पाइन है हमारी, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह की डिफॉर्मिटीज या प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें या आ सकती हैं?
1: पहले तो बता दूं कि स्पाइन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए। ना खाली शरीर का एक ढांचा बनाती है, बट इसमें स्पाइनल कॉर्ड एक सुरक्षित रूप में सुरंग में नीचे आती है ब्रेन से, और इसी से जैसे हमारे हिलाने की शक्ति, एहसास की शक्ति, मलमूत्र नियंत्रण और कई ऑटोनॉमिक फंक्शंस इससे हमारे होते हैं, और इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, चाहे स्पाइन की कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है ये कि जानना कि इनसे आसानी से बचा जा सकता है। हाँ, कुछ स्पाइन की प्रॉब्लम्स के काफ़ी दुष्परिणाम हो सकते हैं, पर बचना बहुत आसान है, और बाई चांस अगर स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाए तो उसके अच्छे इलाज से एक साधारण जिंदगी में वापस जरूर आया जा सकता है। तो अब जान ले कारण क्या होते हैं। जो अगर हम देखें तो स्पाइन में हर कुछ है, स्पाइन में हड्डी है, डिस्क है, लिगामेंट्स हैं, नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, और हर तरह से इस पे असर हो सकता है। तो सबसे आम कारण स्पाइन की प्रॉब्लम्स के मैकेनिकल कारण होते हैं। जो इंसान पहले चार पैरों पे चलता था, जब दो पैरों पे खड़ा हुआ तो मजबूत मांसपेशियों के बलबूते पे। तो अगर हमारी जिंदगी आसीन जैसे हो गई है आजकल, अगर हम आसीन रखें और अगर हम अपने बैठने, लेटने, खड़े होने, काम करने के पोस्चर्स ठीक ना रखें, अपनी जीवन शैली अच्छी ना रखें, तो स्पाइन पे सबसे पहले असर होता है, क्योंकि मांसपेशियां कमजोर हो जाते हैं। और मैकेनिकल प्रॉब्लम सबसे आम प्रॉब्लम्स हैं। बता दूं शालिनी जी की स्पाइन की प्रॉब्लम्स WHO के मुताबिक सबसे आम कारण है डिसेबिलिटी का विश्व भर में। जुकाम के बाद स्पाइन की प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा। तो ये इतनी आम बीमारी है, और इसको बचाने के लिए अगर हम अच्छी जीवन शैली रखें, जिसमें कई जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज हो, प्रॉपर पोस्चर हो, तो इनसे बचा जा सकता है।
0: जी।
1: तो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम स्ट्रेन हो सकता है, बट कई बार डिस्क की डिजेनरेशन हो सकती है, और कई बार इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कभी कभी हमारी इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे गठिया होता है ना छोटे जोड़ों का, वैसे रीढ़ की हड्डी में भी एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है कंडीशन में। मैकेनिकल प्रॉब्लम्स में मेहनत से दर्द बढ़ेगी, आराम से ठीक होंगे, बट अगर आराम करने के बाद दिक्कत बढ़ती है तो हमारा बिल्कुल एक तरह से ये रेड फ्लैग है, हमारा सीधा सस्पिशन जाना चाहिए कि कहीं इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो हमें रूल आउट करना होता है। हड्डियां कमजोर भी हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, विटामिन डी की कमी से भी हड्डी में फर्क पड़ सकता है, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण स्पाइन पे असर हो सकता है।
0: जी, बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी बीमारियां भी हैं, और हड्डी जैसा आपने कहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, और स्पाइन उसका बिल्कुल बैकबोन है हमारी, तो बहुत सारी समस्याएं इससे जुड़ी हो सकती हैं। कॉजेज भी आपने बताए बहुत सारे हो सकते हैं। एक हमारे इस बीच में कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं पहले। हेलो।
2: हेलो
0: जी,
2: गुड आफ्टरनून मैम।
0: जी गुड आफ्टरनून, अपना नाम बताइए।
2: मैम मेरा नाम कुंवर सिंह है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से?
2: मैम दो तीन क्वेश्चन हैं, जैसे आज स्पाइन का इशू है, स्पाइनल कॉर्ड का है, तो क्या ये स्लिप डिस्क का और सियाटिका का भी प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड होता है स्पाइन से? दूसरा मैम, ये जो क्या जो हमारी स्पाइन पर हमारे वेट का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है, अगर वेट कम है या ज्यादा है?
0: जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, और डॉक्टर साहब बताएं इनकी जो समस्या।
1: तो हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सियाटिका, जब भी सियाटिक नर्व के जहाँ फैलती है उसमें दर्द हो तो हम उसे सियाटिका कहते हैं, और एक आम कारण है डिस्क प्रोलैप्स, जो कि अगर रीढ़ की हड्डी में नस पे दबाव हो तो उसके कारण सियाटिका होती है। तो जैसे हमने बताया, इससे भी बचा जा सकता है, बट इसका उपचार भी है, अक्सर दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से एक मलम से आराम आ जाता है, ना आराम आए तो इंजेक्शन भी लगते हैं, और 100 में 5 लोगों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जो दबाव है उसको हटाने के लिए, जो डिस्क प्रोलैप्स से होता है। दूसरा आपका
0: वेट का
1: देखिए, कई चीजें हैं जो प्रीडिस्पोज करती हैं कमर के दर्द को। हमने बात की एक आसीन जिंदगी, बट हमने बात की गलत पोस्चर, बट अगर वेट भी ज्यादा हो तो उससे क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी

0: कि शरीर का आगे को शिफ्ट हो जाता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट होने से रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा जोर आने लगता है और इससे कमर की कई प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो ठीक वेट रखना उतना ही जरूरी है जितना कि अच्छी जीवन शैली रखना। इसी से रिलेटेड मिलता जुलता, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो मांसपेशी नाखाली फूल जाते हैं बट वो आगे की तरफ पेट बढ़ जाता है, उसी तरह रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है,
1: सा हो जाता
0: बिल्कुल
1: है।
0: तो वो रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा तनाव आता है। उतना ही जरूरी होता है कि एक बार जब डिलीवरी हो जाती है, प्रेगनेंसी खत्म होती है, तो इन मांसपेशियों को दोबारा टोन अप करना एक्सरसाइजेस से। और आमतौर पे भारतवर्ष में ये नहीं किया जाता तो ये एक जड़ बन जाती है कि आगे चल के कमर की प्रॉब्लम्स का।
1: जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात है ये। महिलाएं हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं तो वो भी ध्यान रखें इस बात को। और इसका मतलब जो है डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बोन्स को हेल्दी रखना है तो।
0: बिल्कुल, बोन्स को सपोर्ट करने वाले मसल्स को और बोन्स को हेल्दी रखना है तो कहते हैं जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज जैसे टहलने की आदत, ट्रेडमिल, स्पोर्ट्स, एरोबिक, स्विमिंग, डांस, जॉग रन, इनसे मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं और बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं। तो इस पे उनके स्ट्रांग होने से रीढ़ की हड्डी पे कम फोर्स जाता है और उससे डिजनरेशन कम होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक गीत है जिसका अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत पॉजिटिव उसमें एक संदेश है, तो हम चाहेंगे पहले इस गीत को हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा दें क्योंकि कुछ कुछ संदेश जो आप दे रहे थे हाँ मुझे वो ऐसे ही कुछ है। और स्पाइन के जो परेशानियों से जो जूझते हैं पेशेंट्स उनको ये गीत काफी मोटिवेट करता है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो पहले सुन लेते हैं एक गीत।

0: जी हाँ, कर हर मैदान फतेह, और फतेह तो हमें मिलेगी ही जब हम मैदान में उतरेंगे और सही से खेलेंगे और सही तरह से अपना जो डायग्नोसिस है वो कराएंगे कि डॉक्टर साहब
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये गीत आपने बिल्कुल

0: सही चलाया, बिल्कुल उपयुक्त है इसके लिए, क्योंकि उम्मीद, संघर्ष और आत्मविश्वास के साथ ही हम स्पाइन की प्रॉब्लम से भी निकल सकते हैं. स्पाइन की प्रॉब्लम जितनी भी जटिल हो, अगर हम प्रेरणा लेके आगे चलें, हौसला रखें, तो इससे जरूर हम कामयाब होंगे.
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब ये गीत सुन रही थी तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया जो मैं चाह रही थी आपसे पूछूं. वैसे मेरे एक कॉलर वेट कर रहे हैं कि बहुत जब हम स्पाइन की बात करते हैं थोड़ा डर भी जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत हमारे शरीर के सारे भाग जुड़े हुए हैं और हमारा मोशन, हमारी मूवमेंट, सब कुछ इससे कंट्रोल होती है. तो क्या ऐसा भी होता है, बहुत केसेस डिफिकल्ट भी आ जाते?
0: हाँ, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम होता है जी. मतलब दर्द हल्का भी हो सकता है, बट अगर स्पाइन की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़े और अगर उससे जो स्पाइनल कॉर्ड है जो पीछे रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित आ रही है या उससे जो नसें निकल रही हैं उस पे असर हो तो इसके काफी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं. मतलब इतना कि इंसान जहां पे रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है उससे नीचे पूरा पैरालाइज हो सकता है. हिलाने की शक्ति, एहसास की शक्ति, मलमूत्र नियंत्रण सारा खत्म हो सकता है. और अगर ऊपर की चोट हो जैसे गर्दन में तो सांस भी रुक सकता है. तो ये इसके काफी दुष्परिणाम हो सकते हैं. तो पर हाँ, सही उपचार से इनमें से उभरा भी जा सकता
1: जी. और इसीलिए डॉक्टर साहब यहाँ हैं कि अगर कोई ऐसा आप में से जो हमारे श्रोता हैं इस तरह की किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल निराश नहीं हुई है. अगर आप सही जगह पर सही इलाज लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं. हमारे कॉलर से बात करते हैं. हेलो.
2: हेलो
1: जी. जी नमस्कार.
2: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ.
1: जी राजेंद्र जी, बताइए क्या पूछना है.
2: 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70-75 केजी के आसपास जो है मेरा वजन है और 48 वर्ष मेरी उम्र है. ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है. तो पहले तो शालिनी मैम को, शालिनी सॉरी, नमस्कार.
1: जी नमस्कार.
2: और डॉक्टर साहब को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार.
0: नमस्कार जी.
2: डॉक्टर साहब, मैं 2005-06 से ना इस प्रॉब्लम से जो है वो जूझ रहा हूँ. क्या है कि मेरे को हिप्स जॉइंट्स हैं, इनमें जो है वो पेन है और स्टिफनेस रहती है और सर्दियों में बीमारी बढ़ जाती है. अगर मैं एक्सरसाइज करूं तो इससे रिलीफ मिलता है. और इन दिनों में जो है विटामिन डी है, दवा होते है पेन रिलीफ की, और लोशन ऑइंटमेंट और ये टैबलेट ये भी खा रहा हूँ. तो इससे होता है कि मुझे टेम्पररी आराम तो मिल जाता है, परमानेंट आराम जो है नहीं मिल पा रहा. अगर मैं आगे की ओर बैंड हो रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि पीछे की ओर बैंड फोल्ड होता हूँ तो इससे मुझे रिलीफ मिलता है. तो अब मैं ये मुझे कुछ ऐसे महसूस होता है कि जैसे एक पेड़ की डाली होती है ना, वो झुकी होती है नीचे की ओर, पर वो टूट जाए मान लो, पर वो मतलब पेड़ जुड़ी रहती है. तो मुझे कुछ इस किस्म का महसूस होता है, तो प्लीज मार्गदर्शन करें. बड़ी
1: थैंक यू. मैं वही सोच रही थी आपका क्वेश्चन जरा समझ लें. तो जी, तो काफी सारी चीजें हैं.
0: तो जैसे आपने कहा आप 48 वर्ष के हैं, बट आपको कूल्हे में दर्द होता है, कूल्हे की हड्डी में या पीछे बटक्स में पेन होता है. तो आपने बताया कि एक्सरसाइज से भी ये ठीक होता है. तो ये काफ़ी देर से आपकी समस्या चल रही है, तो हमारा आपको ये सलाह होगी हमारी कि आप किसी एक एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें और मुआयना करवा लें, ताकि वो देख के जड़ पता कर सकें और इस हिसाब से इलाज कर सकें. पर जैसे आपने कहा एक्सरसाइज से आपको आराम मिलता है, तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, कूल्हे की एक्सरसाइज. कई बार ये प्रॉब्लम स्पाइन की भी होती है, जो बटक में पेन होता है लगता है कूल्हे में पर होते स्पाइन से, तो उसको पता करना है कि कहां से आ रही है, उसका उस हिसाब से इलाज करना है. खाली दवाइयां इसका उपचार नहीं है, तो हमें कारण पता करना है. हाँ, पेन मैनेजमेंट करनी है, बट आगे जो फैक्टर्स हैं जो प्रीडिस्पोज कर रहे हैं आपकी दिक्कत को, उसको भी हमें सही तरह से पकड़ना है. तो जरूर एक सलाह मशवरा लें एक डॉक्टर से, ताकि आपकी बीमारी को पकड़ा जा सके और उसका ठीक उपचार किया जा सके.
1: तो डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि कई बार बीमारी कहीं और होती है पर सिम्टम कहीं और उसका पता लगता है, तो डायग्नोस्टिक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये डायग्नोस्टिक्स एक तो रोल प्ले करते ही है, ये आप बताएं, और फिर क्या कैसे आप करते हैं, हाउ डू डिसाइड?
0: तो आपने बिल्कुल ठीक बताया. वैसे मैं बता दूं कि तकरीबन 80% लोगों में हिस्ट्री से उनको क्या दिक्कत है उनको सुन के ही हम डायग्नोसिस बना सकते हैं. 10% में एग्जामिनेशन से, है ना, तो उनको उनका मुआयना करके हमें पता चल जाता है कि कहाँ दिक्कत है. और इसको सब्सटैंशिएट, इसको पक्का करने के लिए हमें टेस्ट करने पड़ते हैं, बट उल्टा नहीं होना चाहिए. कई बार लोग आते हैं हमारे पास एमआरआई लेके, हमारे रिश्तेदार को ये तकलीफ है जी, एमआरआई में देख लीजिए.

0: बताइए. नहीं, एमआरआई का इलाज नहीं करना हमें, हमें क्या दिक्कत है उसका डायग्नोसिस बना के उसको कोरिलेट करना है हमें डायग्नोस्टिक से और उसका इलाज करना है. अब बहुत सारे जगह हमें जब क्लियर पिक्चर ना हो, जैसे कि हमारे पिछले श्रोतागण थे उनकी दिक्कत थी, तो हमें उनमें इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं देखने के लिए कि दिक्कत कहाँ से आ रही है. तो उसके लिए अब बहुत एडवांस डायग्नोस्टिक्स हो गई हैं. आप लोग मतलब जैसे एमआरआई है, एमआरआई भी अब पुराना हो गया, उसमें कई तरह की नई एमआरआई टेक्निक्स आ गई हैं. अच्छा. डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, कई नए तरह के एमआरआई जिससे हम एक्सपर्ट्स उनमें से ठीक तरह से बीमारी का पता कर सकते हैं. उसी तरह डायनेमिक एमआरआई भी है. आपको दिक्कत लेट के नहीं है, एमआरआई लेट के हो रहा है, तो कई लोगों में खड़े होके एमआरआई करने में अच्छा, उसका अच्छा पता चलता है तकलीफ का. उसी तरह हमारे एडवांस्ड सीटी स्कैन्स हैं, जिसमें जैसे कि हमारा ब्लड फ्लो देखना है हमें, तो एंजियोग्राफी कर सकते हैं जब हम ऑपरेशन करते हैं अगर गर्दन का, तो वहां पे बहुत एक सुरक्षा बहुत छोटे से पैसेज से हमें स्क्रू डालना पड़ता है. एक तरफ स्पाइनल कॉर्ड है, एक तरफ वो नस है जो दिमाग को जा रही है, ब्लड सप्लाई करती है, तो उसका पैसेज ठीक है कि नहीं वो भी देखना पड़ता है. तो हमें ऐसे एडवांस सीटी एंजियोग्राम्स होते हैं. उसी तरह ईओएस एक एडवांस रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जिससे हम पूरे बॉडी का एक थ्री डायमेंशनल इमेज ले सकते हैं. तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी भी कर सकते हैं, नसों की जांच कर सकते हैं, उसके बारे पता कर सकते हैं. तो कई एडवांस टेक्नोलॉजीज है. बोन डेंसिटी देखने के लिए हम डेक्सा स्कैन से उनके बारे जांच कर सकते हैं. तो हमें पहले हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से शॉर्टलिस्ट करना है कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर पूरा डायग्नोसिस नहीं बन रहा तो ये इन एडवांस डायग्नोस्टिक से हमें वो डायग्नोसिस को पक्का करना है. और बहुत सारे, अभी तो मैं टाइम की कमी के कारण बता नहीं पाया, बट बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं जैसे पेट स्कैन है और बोन स्कैन है, जो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम कहाँ मर्ज है उसको हम पक्का कर सकते हैं.
1: जी, और डॉक्टर साहब, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि ये बहुत आम हम सुनते हैं कि लोग सबसे पहले एमआरआई कराने पहुंचते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं इसी से पता लगेगा, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. तो ये कहाँ तक सही है कि अगर आपको कोई पेन है आप सीधे पहुंच जाए कि एमआरआई कर लो पहले?
0: ये एक तरह से कह सकते हैं मिथ्या है कि आप एमआरआई करा लीजिए आपको सब कुछ पता चल जाएगा. एमआरआई का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए हमें. और ठीक है, एमआरआई एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन है, बट ये समझना चाहिए कि उम्र के बदलाव हर किसी में होते हैं. एक अगर 70 साल के इंसान का एमआरआई कराएं तो उसमें बदलाव होंगे ही होंगे. तो हमें देखना है कि उसमें पहले देख के कि क्या बीमारी हो सकती है और उसको क्लिनिकली कोरिलेट करना होता है. तो जनरली एमआरआई हम सजेस्ट करते हैं इंडिया जैसे देश में जहां हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता इसको, कि अगर कोई रेड फ्लैग्स हो तो फिर तो एमआरआई जरूरी करना है. रेड फ्लैग्स मतलब खतरे के लक्षण. तो अगर उसके साथ बुखार आ रहा है, या जैसे हमने बोला कि रेस्ट करने के बाद दिक्कत हो रही है, लेटे लेटे दिक्कत हो रही है, नाइट पेन हो रहा है, कमजोरी पैरों में बढ़ती जा रही है, मलमूत्र नियंत्रण पे असर हो रहा है, या हिस्ट्री है कैंसर की, वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स कहते हैं जिसमें एमआरआई जरूरी हो जाता है. उसके बाद अगर आप ठीक से आपने उपचार किया और आराम नहीं आ रहा, जनरली कहते हैं 6 हफ्ते के लिए, या दिक्कत बहुत ज़्यादा है और उसमें आराम ना आ रहा हो, तो फिर एमआरआई पे जाना चाहिए. नहीं तो हर किसी को एमआरआई में जाने की जरूरत नहीं होती.
1: तो सबसे पहले कोई तकलीफ है तो पहले डॉक्टर के पास जाएं.
0: बिल्कुल,
1: खुद डायग्नोस्टिक्स पे या उस पे ना चले जाएं.
0: हाँ बिल्कुल, मतलब हाँ अगर हल्की है दिक्कत तो आप खुद भी इलाज शुरू कर सकते हैं, बट अगर आराम ना आ रहा हो तो जरूर डॉक्टर से उसका मुआयना जरूर करा लें.
1: ताकि क्या करेंगे इलाज?
0: अब जैसे बताया कि जैसे जुकाम है उतना ही कॉमन कमर का दर्द है ऑलमोस्ट, है ना. हाँ, तो हर जुकाम के लिए तो हम डॉक्टर के पास जाते नहीं. तो कमर का अगर दर्द है और उसमें कोई रेड फ्लैग्स नहीं है जैसे हमने बात की, तो आप सेक कर सकते हैं, मलम लगा सकते हैं. कुछ जो ऑफ द काउंटर ड्रग्स हैं जो मतलब मिल जाती हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के दर्द के लिए, उनको भी ले सकते हैं. कई बार फिजियोथेरेपिस्ट के बाद जाके फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं. अगर आराम ना आ रहा हो या दिक्कत बढ़ रही हो या रेड फ्लैग्स हैं तो जरूर डॉक्टर के पास जाइए.
1: तो डॉक्टर साहब, कितने दिन ऐसे घरेलू इलाज करके वेट कर सकते हैं? कुछ ऐसा होता है क्या कि 2-4 दिन देखो, हफ्ता देखो, महीना देखो?
0: अक्सर देखा गया है

0: कि ये 2 से 3 हफ्तों में ये सिम्टम्स अपने आप
1: सबसाइड हो
0: सबसाइड
1: जाएंगे.
0: हो जाते हैं. अगर बार बार दोबारा नहीं होते तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है.
1: ठीक है. और मैसेजेस भी हमारे पास बहुत आ गए हैं. हेलो आरजी ऑफ आकाशवाणी रेनबो, वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम, और इसको मोबाइल एप्लीकेशन पे हम सुन रहे हैं. ये हमें लिखकर भेज रहे हैं कुंडली नरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट श्री भूमि आसाम से. हमारे श्रोता हैं हितेंद्र दास, मानस दास, वर्षा दास, शेफाली दास और माधव दास. तो बहुत बहुत धन्यवाद. और मोबाइल ऐप पे आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे वो श्रोता जो अभी तक नहीं इसे डाउनलोड कर पाए हैं, आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. न्यूज़ ऑन AIR हमारा ऐप है. इसके अलावा जो मैसेज आया है डॉक्टर साहब, कपिल हमें पूछ रहे हैं दुबई से कि क्या B12 का कोई रोल होता है स्पाइन में.
0: हाँ जी, देखिए, अगर जैसे पहले श्रोतागण ने पूछा था कि अगर शियाटिका होती है या जैसे हाथ में भी दर्द जाते हैं, तो वाइटामिन B12 का रोल होता है नर्व ट्रांसमिशन में. और अगर वाइटामिन B12 की कमी हो तो जो नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में दर्द हो सकता है. तो आपके डॉक्टर साहब एवेल्युएट करेंगे, और अगर आप में उन्हें लगे कि वाइटामिन B12 की कमी के कारण लक्षण है तो वाइटामिन B12 जरूर देंगे. और आम तौर से जब भी दर्द जैसे पैरों में या हाथ में फैलता है नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में वाइटामिन B12 जरूर होता है, क्योंकि इसका रोल है नर्व ट्रांसमिशन में.
1: अच्छा, तो वो ब्लड टेस्ट से हो जाता है?
0: ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है.
1: जी, हमारे श्रोता पुनः एक बार जुड़ना चाह रहे हैं, शायद हमारे पुराने श्रोता ही हो जिन्होंने ट्राई किया हो. बात करते हैं. हेलो.
2: हेलो
1: जी, जी बताइए, कौन बोल रहे हैं?
2: हेलो मैम, नमस्ते.
1: जी नमस्कार
2: मैम, मैं प्रशांत शर्मा बोल रहा हूँ मेरठ से.
1: जी बताएं प्रशांत जी.
2: मैडम, शुगर की वजह से क्या मेरे स्पाइन में दर्द रहता है? मैडम स्पाइन में दर्द रहता है मेरे.
0: आपकी उम्र कितनी है?
2: सर 44 साल.
0: 44 साल शुगर के कारण 44 साल
2: पे मैं सर.
0: हाँ, बट कब से है आपको डायबिटीज?
2: सर सन 2019 से है सर.
0: 2019 से, तो अभी 7 साल हुए. जब डायबिटीज लंबी रहती है तो उससे हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं. पर आपकी उम्र में 7 साल में हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएं कि उससे दर्द हो, चांस थोड़ा कम है. बट ब्लड शुगर से कई बार मसल्स भी थोड़ा वीक होती हैं. बट आप में ज्यादा चांस है कि जो आपका कमर का दर्द है वो मैकेनिकल कारण से है. अगर आपको सुबह उठने में कमर अकड़ी लगती है और चलने फिरने से आराम आता है, तो आपको हड्डियां कमजोर या इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स की तरफ देखना है, नहीं तो मैकेनिकल पेन का ही ज्यादा चांस है आप में होने का.
2: जी सर,
1: जी धन्यवाद कॉल करने के लिए. हमें ये चंद्रपुर नेशनल पार्क तालुका तिमूर डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से लिखने वाले हैं. उनका नाम है कुमार गौरव इंदुरकर. ये लिख रहे हैं सर, फाइन हेयर फ्रैक्चर, ये क्या होता है?
0: हेयरलाइन फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं ये. हाँ, बहुत सारे लोगों में जो फ्रैक्चर रीढ़ की हड्डी में होता है वो बिल्कुल जैसे आप फ्रैक्चर का सोचते हैं कि हड्डी आपस में सरक गई है, वैसा नहीं होता, बट उसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर की तरफ होता है. और बहुत सारों में वो दब जाती है हड्डी, दो फ्रैक्चर के टुकड़े अलग नहीं होते. तो ये मतलब डिपेंड करता है, कई यंग लोगों में भी, जवान लोगों में भी हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकते हैं चोट के कारण. बट ज़्यादातर देखा जाता है जैसे उम्र बढ़ती है तो हड्डियां जब कमज़ोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो या ऑस्टियोमलेशिया हो, तो उनमें ये हेयरलाइन फ्रैक्चर्स बहुत आम होते हैं. मतलब ज़्यादा जोर से चोट भी लगे, चलते चलते झटका लगा, या चलते चलते थोड़ा गिर गए, या स्पीड से कार या बस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से चली गई और उसी झटके में हड्डी दब जाती है. तो इसमें जरूरी होता है देखना कि हाँ वो जो फ्रैक्चर है वो स्थायी है या अस्थायी है, स्टेबल है या अनस्टेबल है. क्योंकि हमने बात की कि पीछे ही सुरंग में नसें आ रही हैं, स्पाइन कॉर्ड आ रही है, तो कहीं उस पर दबाव का चांस तो नहीं है. तो एक एक्सरे करते हैं, डायनेमिक एक्सरे, सामने झुक के और पीछे झुक के. अगर उसमें वो आगे पीछे हड्डी नहीं होती तो वो स्थायी फ्रैक्चर है, स्टेबल फ्रैक्चर है, और उसमें चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं जितना दर्द अलाउ करे. बट अगर वो अस्थायी है तो उस समय या तो उसको फिक्स कराना चाहिए या बेड रेस्ट करना जब तक वो स्थायी ना हो जाए. और उतना ही जरूरी है कि जो हड्डियां कमजोर हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, उसका भी पता चले कि क्यों हड्डियां कमजोर हैं, उसका ठीक से उपचार किया जाए, नहीं तो और हड्डियां ऐसे उनमें फ्रैक्चर हो सकते हैं. और ऑस्टियोपोरोसिस जो रीढ़ की हड्डी में, उससे कई ऐसे

0: दुष्परिणाम होते हैं जो अल्टीमेटली जिसमें काफी मॉर्बिडिटी होती है।
1: जी जी हमारे कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो
2: हेलो नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार
2: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: जी सर मेरा नाम संजीव कुमार है, मेरी एज 44 इयर्स है सर, और वजन 102 किलो था अभी पिछले दिन पहले। हाइट है जो वो 5'10" या 11" है। तो सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसी तब बैठता हूँ ना कुछ देर के लिए तो दुखना लगती है कमर सर, वेट पेट बहुत आगे निकले है सर, अब तो घुटने में भी प्रॉब्लम है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए सर ताकि बैठने उठने वाली दिक्कत ना हो। अब मैं लेटो है आपसे बात कर रहा है, अब मेरी कमर दुख रही है सर नीचे से।
0: तो 44 साल के लिए मतलब अगर आपका, हमने पहले बात की थी, अगर मोटापा हो तो उससे हमारी रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा प्रेशर आता है, तो सब कुछ देखना होगा आप को, आपकी जीवन शैली कैसी है, आपको टहलने की या कोई ऐसे स्पोर्ट्स या कोई ऐसी आदत है कि नहीं, ठीक से बैठते हैं कि नहीं, पोस्चर ठीक रखते हैं कि नहीं। तो आपको मोटापा कम करना पड़ेगा और आपको जीवन शैली में टहलने की या ऐसे कोई जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज की आदत रखनी होगी और बैठने लेटने खड़े होने काम करने का ढंग ठीक रखना होगा। आप 4 से 5 महीने इस पे फोकस कीजिए और ना आराम आए तो जरूर आप किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा लीजिए, मतलब ज्यादातर चांस है कि आपको ये सब करने से ही आराम आ जाना चाहिए।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं। हमारे साथ हमारे आज के रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर HS छाबड़ा, डायरेक्टर हैं स्पाइन एंड रिहैबिलिटेशन श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, और बात कर रहे हैं हम आज एडवांस स्पाइन केयर एंड रिहैबिलिटेशन पर। आप हैं रेडियो डॉक्टर में।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप हैं रेडियो डॉक्टर में और आपके साथ हैं आपकी दोस्त शालिनी मित्तल और साथ में हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर एच एस छाबरा। बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं डॉक्टर साहब, फोन लाइन भी कंटिन्यूस बिजी है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे बहुत जरूरी आपको पूछने हैं विषय संबंधित। पहले एक कॉलर को ले लेते हैं, वो लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
2: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी जी गौतम साहब, बहुत बहुत स्वागत
2: है। कि जब हम ऑपरेशन कराते हैं तो हमारे जो एनेस्थेटिक जी हैं वो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं, तो मैंने बहुत देखा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी में साइड पेन है और बहुत से लोग तो 10-10 साल से कहते हैं कि हमारी कमर में दर्द है, इंजेक्शन लगाया था। तो मेरा पूछना है कि क्या हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर थी या हमारे एनेस्थेटिक जी की कुछ कमी रही, कृपया विस्तार से बताएं।
1: बहुत कॉमन प्रश्न है ये।
3: हाँ जी, हाँ जी, ये आम पूछा जाता है इसके बारे। देखिए, ऐसा कि हमने बताया ना कि कमर का दर्द जुकाम के बाद सबसे आम बीमारी है, तो वैसे भी हर किसी में 10 में से 8 लोगों में कमर का दर्द कभी ना कभी तंग करेगा। तो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा तो जरूरी नहीं है कि उसी के कारण कमर का दर्द हुआ, और कई बार उसके बाद दर्द इसलिए शुरू होता है क्योंकि ऑपरेशन के बाद हम अपनी थोड़ी देर के लिए जीवन शैली आसीन कर लेते हैं, हम रेस्ट पे रहते हैं और चलते फिरते नहीं है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाते हैं। तो अगर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन के कारण दर्द हो तो उसके लक्षण अलग होते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि ये मैकेनिकल कारण है और इसको अगर आप अपनी जीवन शैली बदलें तो ये दर्द में आराम आना चाहिए। नहीं आराम आए तो ज़रूर एक सलाह मशवरा कर लें किसी डॉक्टर से।
1: जी धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जैसे समस्याओं की बात हो रही है, आपने भी शुरू में बताया कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हो सकती हैं और डायग्नोस्टिक्स पर भी हमने बात की, लेकिन जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं किसी भी पेशेंट का तो किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या उसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं या सबके साथ उसी उन्हीं मेडिसिन से आप चलते हैं?
3: नहीं नहीं, वो कारण के हिसाब से इलाज होता है, और अगर प्रिंसिपल्स बोलें स्पाइन की बीमारियों के मैनेजमेंट का, तो प्रिंसिपल यही होता है कि आपने दर्द का तो इलाज करना है पर उतना ही जरूरी कारण को हटाना है। अगर नहीं हटाएंगे तो वो दर्द बार बार आता जाएगा, और यही एक कारण है कि क्यों कमर का दर्द एक महामारी की तरह फैला हुआ है। अगर हम वो कारण पे नहीं काम करें तो, उदाहरण के तौर से जैसे कमर का दर्द है क्योंकि जीवन शैली हमारी आसीन है और पोस्चर ठीक नहीं रखते, दर्द से हमने दर्द को दबा लिया पर कारण नहीं हटाया तो कुछ दिन बाद वो फिर आएगा। तो इसलिए मैनेज द पेन एंड रिमूव द कॉज, उसी बार बार दिक्कत को हटाने के लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स और भी जो हैं उन पे भी काम करना होता है, जैसे कि अगर मोटापा है तो उस पे काम करना है, अगर स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। अब आप बोलेंगे स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल से कैसे कमर का दर्द का क्या लेना देना, तो अगर दर्द लंबी चलती है तो उससे टेंशन होती है, टेंशन से दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति गिरती है, उससे और दर्द बढ़ती है, उससे और टेंशन होती है, एक विशेष साइकिल हो जाता है और माइंड सेंसिटाइज हो जाता है। तो जब भी लंबी दर्द चलती है, खासतौर से 3 महीने से ज्यादा, अगर हम इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ना देखें तो आराम अच्छा आने का चांस कम हो जाता है।
1: अच्छा।
3: तो इसलिए कारण को देखना है। जैसे अगर आपको दर्द खाली कमर का है तो उसमें सेक मलम दवाई फिजियोथेरेपी से चल सकती है, बट अगर दर्द पैर में फैल रहा है तो उसके लिए अलग तरह से दवाइयाँ जैसे प्रीगैबलिन गाबापेंटिन वगैरह चलती हैं, अलग थेरेपी साथ में शुरू होती हैं। ना आराम आए तो इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, छोटे से 100 में 3-4 में ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। उसी तरह अगर दिक्कत, अगर जैसे चोट लगी रीढ़ की हड्डी में और उसके कारण अगर नीचे का हिस्सा पैरलाइज

0: हो गया है, तो उसमें जो स्पाइन में इंस्टेबिलिटी है उसको हमें दूर करना पड़ता है ऑपरेशन से, उसको फिक्स करना पड़ता है, दबाव हटाना पड़ता है. पर उसके साथ साथ हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से पेशेंट को डालना पड़ता है. कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन मतलब ना खाली शारीरिक रिहैबिलिटेशन बट साइको सोशल रिहैबिलिटेशन. मतलब आप सोचिए, एक अगर जवान इंसान में रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो गया, तो ना खाली उस इंसान पे पर पूरे परिवार पे कितना मानसिक तनाव आता है ना. तो और आम तौर से ये मेन ब्रेड अर्नर्स होते हैं फैमिली के, इन्हीं पे पूरा परिवार चल रहा होता है. तो ना खाली इंसान की साइको सोशल रिहैबिलिटेशन करनी होती है पर पूरे परिवार की भी साइको सोशल रिहैबिलिटेशन करनी होती है. अगर वो पैरालाइज हो गया बाय चांस, तो उसको एक मतलब शारीरिक पुनर्वास से कैसे उसके बावजूद नॉर्मल जिंदगी में आना है, चाहे व्हीलचेयर से. खाली इतना नहीं, इसके साथ साथ उसको कैसे एक व्यवसाय में वापस लाना है, कैसे वो समाज में वापस जा पाए. आम तौर से जैसे बाहर सड़क पे व्हीलचेयर चलाना मुश्किल है, बस में जाना मुश्किल है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: कैसे पूरा समाज में वो एक तरह से कम्युनिटी इंक्लूजन हो जाए और नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ जाए, ये सारा स्पाइनल इंजरी मैनेजमेंट का बहुत एक अहम पार्ट होता
1: जी
0: है. और ऐसे रीढ़ की हड्डी की कई तरह की बीमारियां होती हैं, ट्यूमर भी हो सकता है, उसका इलाज उस हिसाब से कई बार ट्यूमर निकालना पड़ता है, कई बार उसमें स्पेसिफिक इंजेक्शन से आराम आ जाता है. उसी तरह अगर कोई बचपन से बीमारी है ना, या जैसे डिफॉर्मिटी है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है
1: जी जी
0: और टेढ़ी बढ़ती जा रही है, ना खाली देखने में बुरा लगता है बट अगर बचपन से हो तो इससे सांस लेने की क्षमता पे भी असर हो सकता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी और रिब्स ही तो वो चेस्ट कैविटी को बना रहे
1: कई
0: हैं.
1: लोग बहुत झुक के चलते हैं
0: वहाँ बिल्कुल, तो वो मतलब बहुत तरह की रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स हैं. सबका इलाज अलग है पर संभव है. यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि दो चीज़ें तो खास तौर से बताना चाहूँगा कि एक तो ज़्यादातर बीमारियों का इलाज बिना सर्जरी के कंजर्वेटिव तरीके से किया जा सकता है. आप कह लीजिए 95% या 97% पेशेंट्स में, पर अगर वो 3 से 5% में हो जिनमें ऑपरेशन की जरूरत हो, तो उससे डरना नहीं चाहिए. वो जमाने गए जब रीढ़ की हड्डी के स्पाइन की सर्जरीज सेफ नहीं होती थी. आज एडवांस टेक्नोलॉजी से ये बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित तरह के सर्जरी करके उनको साधारण जिंदगी में वापस लाया जा सकता है. जब ऑपरेशन का जरूरत हो तो ना करना कहीं ज्यादा हानिकारक हो सकता है ना कि करना, तो उससे डरना नहीं. बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे हम स्पाइन सर्जरी के दौरान पूरा स्पाइनल कॉर्ड और नसों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, न्यूरो मॉनिटरिंग कहते हैं इसको, ताकि कभी भी कोई दिक्कत आ रही हो उसी समय उसका उपचार कर सकें. अगर मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज से रीढ़ की हड्डी में लोग क्यों डरते हैं कि कहीं स्पाइनल कॉर्ड पे या नस पे उसका असर ना आ जाए, तो एक तो ये न्यूरो मॉनिटरिंग है बट प्रिसीजन भी आ गया. आप कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से आ गया, अब नेविगेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें टेबल पे सीटी स्कैन करके नेविगेशन टेक्नोलॉजी से आप रियल टाइम देख पा रहे हैं कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपका स्क्रू अगर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है. और रोबोटिक नेविगेशन टेक्नोलॉजी से वो रोबो के थ्रू स्क्रू जाता है, जिससे और भी सुरक्षित हो जाता है. तो इसी तरह एनेस्थेटिक टेक्निक्स बढ़ गई हैं, बेहतर हो गई हैं. और उसके बाद पूरा जो पुनर्वास जो ऑपरेशन के बाद बहुत जरूरी होता है, वो भी इतना एडवांस्ड हो गया, उसमें भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे रीढ़ की हड्डी की अगर प्रॉब्लम हो तो इंसान को साधारण जिंदगी में वापस लाया जा सकता है. हाँ, पर यह भी बोलना बहुत जरूरी है कि इसके बारे ज्यादा जागरूकता नहीं है, और आपके माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ. लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि जो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि बीमारी बचाना ज्यादा अनिवार्य है ना कि उसका इलाज करना, तो ये रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम्स में बिल्कुल खरा उतरता है. क्योंकि हमने बात की ना, अगर रीढ़ की हड्डी में चोट से स्पाइनल कॉर्ड पे असर हो जाए तो

0: वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज भी हो सकते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स दोबारा से जीवित नहीं होते जैसे कि शरीर के बाकी भागों में। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स जीवित नहीं होते, तो इसलिए इन बीमारियों से बचना एक, और ये बहुत आसान है, एक अच्छी जीवन शैली से और कुछ नियमों का पालन, सेफ्टी रूल्स का पालन करने से। जैसे हम में से कितने लोग कार में पीछे बैठ के सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं, ऊंचाई में लोग काम करते हैं सेफ्टी हार्नेस का उपयोग नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं स्पोर्ट्स के नियमों का पालन नहीं करते जिससे चोट लग सकती है,
1: ड्राइव करते हैं हेलमेट नहीं पहनते,
0: बिल्कुल ड्राइव किया पता नहीं पानी कितना गहरा है नीचे।

0: तो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बिलबोर्ड पे आपका ध्यान है। सरकार ने अगर ये नियम बनाए हैं तो किसी कारण से बनाए हैं। हमें सीट बेल्ट का उपयोग इसलिए नहीं करना कि ट्रैफिक पुलिसमैन आ गया हमारा चालान हो जाएगा, हमें अपने बचाव के लिए
1: जी,
0: इस
1: उसको
0: सीट बेल्ट
1: समझना
0: का,
1: बहुत
0: हाँ,
1: जरूरी है।
0: वो समझना बहुत
1: डॉक्टर साहब,
0: जरूरी।
1: आप फॉल की भी बात कर रहे थे, कई बार लोग बच्चे खास तौर पर ऊपर से गिर जाते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो
0: तो
1: उससे भी
0: मतलब
1: बचा।
0: और गिरते हैं तो मतलब भारतवर्ष में तो कई ऐसे अनोखे कारण हैं गिरने के जो बाहर देखने को ही नहीं मिलते, जैसे पेड़ों पे चल के, मतलब लोग फल तोड़ने के लिए चढ़े, कोकोनट टॉडी
1: बिल्कुल
0: टॉपिंग,
1: जी,
0: कोकोनट ट्रीज पे ऊपर चढ़ना,
1: हाइट बहुत हो जाती है।
0: बिल्कुल। आप उस रात को अपने किसी रिश्तेदार के घर गांव में गए, ऊपर छत पे रात को थोड़ा सेवन किया, सो गए, आधी नींद में उठे और साइड में पैरापेट नहीं थी, उसके ऊपर
1: ओह
0: से गिर
1: माय
0: के
1: गॉड।
0: नीचे गिर गए, पतंग के पीछे भाग रहे हैं उससे गिर गए, है ना, बंदर आ गया उससे बचने के लिए बैल्कनी से झुक के सामान ऊपर खींच रहे हैं उनसे गिर गए, कूलर को रिपेयर कर रहे हैं उससे गिर। इन चीजों में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक बार कभी एक स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड को देखेंगे
1: जी
0: तो आप समझ लेंगे इन चीजों की कितनी अहमियत
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया है, बहुत एक इफेक्टिव वे है, और मुझे लगता है बहुत सारे श्रोता ये सुनकर उन पे भी प्रभाव पड़ा होगा, जैसे मुझे पड़ रहा है कि मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता, और आप उन चीज़ों से डील करते हैं, और मैसेजेस और कॉल्स बहुत सारे आ रही हैं, लेकिन जो आपने अभी बात बताई काफ़ी चीज़ तो उसमें कवर हो जाती है जो लोग पूछना चाह रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस बाकी रह रहे हैं, जैसे ये बलजिंदर जी लिख रहे हैं दिलशाद गार्डन से, और साथ ही साथ एक और मिलता जुलता मैसेज है रोहिणी से सतीश कुमार जी का। इन दोनों ने ही जानना चाहे कि खान पान का क्या रोल होता है, एक तो ये इन्होंने जानना चाहे, और किस तरह से हम, इन्होंने लिखा है कि खाने में हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं जिससे हमारी बैक सही रहे, ये
0: नहीं,
1: जानना
0: ये
1: चाहे।
0: बहुत ही अहम सवाल है। जैसे कि अच्छी जीवन शैली हमने बताया बहुत जरूरी है, उसी अच्छी जीवन शैली में अच्छा पौष्टिक आहार एक अहम रोल प्ले करता है।
1: जी
0: तो इसलिए खास तौर से जिंदगी में कुछ पीरियड्स होते हैं, जैसे कि बच्चा जब हाइट एकदम अपना बढ़ाता है तो उसको प्रोटीन्स और कैल्शियम की जरूरत है, तो वो आहार में प्रोटीन्स और कैल्शियम रिच डाइट उसको लेना बहुत जरूरी हो जाता है।
1: जी
0: उसी तरह जैसे महिलाएं जब उनका मीनोपॉज होता है, पीरियड्स रुकते हैं, तो उसके बाद उनमें बोन हेल्थ पे असर होने लगता है, अगर वो ठीक जीवन शैली ना रखें और अगर खान पान ठीक ना रखें। और ये बताया गया कि नेचुरल वे से अगर हम कैल्शियम और प्रोटीन का आहार ठीक रखें तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है।
1: जी
0: तो अच्छा पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है बोन हेल्थ के लिए और रीढ़ की हड्डी के हेल्थ के लिए, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया बचाया जा सकता है। और एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्कोपीनिया। कहते हैं कि ना खाली बोन्स वीक होती हैं उम्र के साथ,
1: मसल्स
0: मांसपेशी इतने कमजोर
1: जी
0: हो जाते हैं, और इसके लिए भी एक्सरसाइज और अच्छा आहार बहुत जरूरी बताया जाता है।
1: जी जी जी और बहुत सारे मैसेज हैं लेकिन मैं चुन चुनकर और शॉर्ट में ले पा रही हूँ। कुछ लोगों ने बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस भेजे हैं। प्रोमिला या बेदी ने लिखा है, हमें नमस्कार भेजा है, और साथ ही बोला है कि कई बार मालिश बहुत करवाते हैं लोग, खासतौर पर पीठ की और कमर की, तो मैंने इसलिए ये प्रश्न लिया है, और कई बार रोड साइड वालों से करवा लेते हैं या किसी को भी बुला लेते हैं कि मुझे थोड़ा कमर दर्द है जरा मसाज कर दो। कहाँ तक सही है, क्या इसमें नुकसान होता है, और इसमें लिखा है कि कई लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं, तो इस तरह के केसेस आते हैं डॉक्टर साहब?
0: हाँ जी, आते हैं। देखिए, ऐसा है कि मालिश करवाना शायद गलत नहीं होगा, मसल स्पाज़म को कम करता है, जो जकड़न होती है उसको कम करता है, बट कब करवा रहे हैं? अगर आप में बहुत तेज दर्द है और मालिश किया और अगर जोर से झटका दे, कई लोग पैर पकड़ के खींच देते हैं, तो उससे दिक्कत बढ़ सकती है। तो ये अगर आप करवाएं तो किसी ट्रेंड इंसान से ही करवाएं, एक्सपर्ट से करवाएं। बाहर एक प्रोफेशन होता है काइरोप्रैक्टर्स का, भारतवर्ष में ऐसा कोई ट्रेंड प्रोग्राम नहीं है, तो इसलिए या तो ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट से करवाएं या मालिश जो ठीक करता है, बट उनको जरूर बोले कि जोर से झटका नहीं देना हमारे रीढ़ की हड्डी को या शरीर को, जिससे हमें दिक्कत आ सके।
1: जी, तो ये खुद देखना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, बताना पड़ेगा और
1: जी
0: जानना पड़ेगा
1: जी
0: और किससे करवा

0: हैं वो चुनना पड़ेगा. बहुत लोग कहते हैं हम कायरोप्रैक्टर हैं, बट बाहर से कोई डिग्री करके आए हो ऐसे तो बहुत कम लोग हैं. तो आपने देखना है कि उनका उनका बैकग्राउंड कैसा है और फिर करवाएं.
1: जी बिल्कुल. और हमारे श्रोता हैं सतीश जी, इन्होंने कुछ और भी पूछा है साथ में. एक तो इन्होंने ये बोला है कि डॉक्टर साहब 2 साल से इनको प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, मेडिसिंस ले रहे हैं पर इनको रिलीफ मिला नहीं है, और आज जो आप बता रहे हैं उससे बहुत कुछ जानकारी हमें मिल रही है. ये आपसे मिलना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी चाह रहे हैं कि आप कहाँ बैठते हैं, कब मिल सकते हैं. तो बिल्कुल कार्यक्रम खत्म होने वाला है, मैं अभी बताऊंगी कि डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं. वैसे बता देती हूँ, डॉक्टर HS छाबड़ा डॉक्टर साहब का नाम है. आप श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में बैठते हैं और डायरेक्टर हैं स्पाइन एंड रिहैबिलिटेशन के. तो आप उनसे मिल सकते हैं वहां पर जाकर. सतीश जी, इनकी एज है 65 ईयर्स, रोहिणी में रहते हैं. और मैसेज में हमें गीता जी ने भी लिखा है एक मैसेज, और लिख रही हैं कि मुझे बहुत दर्द होता है और इलाज कराने में भी नीचे कमर के नीचे कभी कभी बहुत तेज दर्द होता है. तो चलिए आप ही डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं. डॉक्टर अनिल कालरा हमको लिख रहे हैं गुरुग्राम से, वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन. मैसेजेस बहुत हैं, मैं माफी मांगना चाहूंगी कि हम नहीं ले पा रहे हैं सारे प्रश्नों को. पर डॉक्टर साहब जैसे आपने टिप्स बताए थे यंगस्टर्स के, तो एक पोस्चर की बात भी आपने बात की थी जो बहुत मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल पोस्चर बहुत बिगड़ रहा है लोगों का. कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे लेटना है, वो चीजें बड़ी बिगड़ रही हैं. और खासतौर पर कंप्यूटर को दोष देते हैं, फोन को दोष देते हैं. तो उस तरह के कितने केस आते हैं आपके पास, गर्दन से रिलेटेड आते होंगे?
0: देखिए, कहते हैं कि जब कोविड का पैंडेमिक आया ना,
1: जी जी,
0: तो कमर के दर्द का भी एक पैंडेमिक पूरे विश्व में आ गया. पहले तो एपिडेमिक होता था, वो पैंडेमिक. और वो कारण क्या था? एक तो घर के बीच सीमित हो गए, तो जी. वो एक्सरसाइजेस खत्म हो गई, जीवन शैली आसहीन हो गई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, पर पोस्चर पे बहुत असर हुआ. वर्क फ्रॉम होम है, बिस्तर में बैठ के लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, दफ्तर में तो अर्गोनॉमिक्स होते हैं काम करने के, घर में कोई होते नहीं है. तो पोस्चर ठीक रखना बहुत जरूरी है. अगर आप रीढ़ की हड्डी को सामने से देखें तो सीधी दिखेगी, साइड से देखें तो गर्दन में आगे की तरफ, पीठ में पीछे की तरफ, कमर में आगे की तरफ कर्व्स होते हैं, इनको लॉर्डोसिस या काइफोसिस कहते हैं. अच्छा. अच्छे पोस्चर में इसको आप मेंटेन करके रखते हैं. अगर आप पोस्चर खराब रखते हैं, जैसे कुर्सी में झुक के बैठे, जैसे कि बिस्तर में झुक के लेट के टीवी देखने, पढ़ने, लैपटॉप का इस्तेमाल करने का आपने किया, या इजी अच्छी कुर्सी का इस्तेमाल नहीं किया, तो उससे वो जो कर्व है वो रिवर्स हो जाता है. और जैसे उसी तरह जैसे अगर उंगली को खींच के रखें तो जोड़ में दर्द होगा, तो कमर के दर्द में वैसे ही दर्द होना शुरू हो जाता है. तो ये बचपन से ही बच्चों में, स्कूलों में और घरों में उनको बताना कि पोस्चर ठीक क्यों रखना है और कैसे रखना है वो बहुत जरूरी. एक अच्छी कुर्सी का इस्तेमाल करें, उसमें सीट और बैकरेस्ट का एंगल फिक्स्ड हो 100 से 110 डिग्री, उसमें पूरा पीछे तक बटक्स को पूरा पीछे तक सटा के लेके बैठें, झुक के नहीं बैठें. लंबा बैठना है तो हर 40-50 मिनट में पोस्चर बदल लें. उसी तरह बिस्तर में काम करने की आदत ना रखें. बहुत शौक है तो आजकल डोमेस्टिक बेड्स हो जाते हैं जो हॉस्पिटल के बेड्स की तरह ऊपर हो सकते हैं, ताकि पीठ सीधी रहे, या बैक रेस्ट लगा सकते हैं, है ना. तो उसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं मैट्रेस का क्या रोल है, मतलब किसी को सख्त मैट्रेस सूट करेगा, किसी को नरम, पर वो धसा नहीं होना चाहिए बीच में. फिर कई लोग पूछते हैं तकिया लगाने से दर्द बढ़ता है क्या? नहीं, देखो ऐसा है, आप कैसे लेटते हैं उस पर निर्भर करता है. अगर आप साइड पे लेटते हैं और तकिया नहीं लेंगे तो गर्दन खींचेगी आपकी, और 8 घंटे अगर गर्दन खींचती रहे तो दर्द तो होगा ही आपको. अगर सीधा लेटते हैं तो पतला तकिया लें, साइड में लेटते हैं तो इतना लें जितना बिस्तर और सिर के डिस्टेंस को पूरा करे, ताकि आपकी गर्दन सीधी रहे रात को. अगर दोनों सोते हैं तो अपना तकिया बना लें या सर्वाइकल पिलो यूज करें, बीच में पतला और साइड से मोटा हो, ताकि करवट लें तो आप मोटे वाले हिस्से में आ जाएं. तो इसलिए अच्छा पोस्चर और जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस ये बहुत जरूरी है स्पाइन हेल्थ के लिए.
1: जी जी, समय हमारे पास ज्यादा नहीं बचा है, पर एक बात जो आपने बोली थी कि हमें रिहैबिलिटेट अगर करना है तो बहुत कुछ उन्हें साइको सोशल सपोर्ट देना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर मेरे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि हमारे बहुत सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं जब कोई एक ऐसा पेशेंट होता है जिसको रिहैबिलिटेट आप करते हैं पूरी मेहनत करके, उसको समाज का क्या रोल है उसके प्रति, वो थोड़ा सा बताइए. आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं लिसनर्स से?
0: देखिए ऐसा है कि

0: बहुत बार हम कभी किसी को व्हीलचेयर पे देखते हैं तो हम उस पर हमारा होता है रवैया जैसे उस पर तरस खाने का.
1: एग्जैक्टली हाँ.
0: इससे उस इंसान पे ज्यादा
1: नेगेटिव
0: इफेक्ट होता है.
1: जी.
0: हमें उन पे तरस नहीं खाना, हमें उन्हें एम्पावर करना है कि वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल पे वापस आ सके. हमें उन्हें सक्षम बनाना है कि वो हमारी तरह एक साधारण जीवन शैली में वापस आ सकें. तभी एक मिनिस्ट्री भी जो पहले जिसका नाम अलग था उसको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री बना दी गई, क्योंकि ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को हमें एम्पावर करना है. तो आप लोगों को एनकरेज करिए कि वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ सकें, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको तरस मत खाइए. और जैसे कहते हैं कि पहले अपने पे वो सब करें, तो आप अपने पे रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम से बचाव के सारे नियम फॉलो कीजिए और फिर दूसरों को भी एम्बेसडर्स बनिए इन प्रॉब्लम्स, आम प्रॉब्लम से बचने के लिए. ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा सारे श्रोता.
1: थैंक यू सो मच इतना पॉजिटिव मैसेज के लिए. और थोड़ा सेंसिटिव आप रहिए और दूसरे की परेशानी को समझिए और वैसा ही बिहेव उनके साथ करिए. अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि डॉक्टर साहब को धन्यवाद दे सके. आज हमारे साथ रहे डॉक्टर एच एस छाबरा, डायरेक्टर है स्पाइन एंड रिहेबिलिटेशन में श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, प्रेसिडेंट हैं स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी में और चेयरमैन हैं स्पाइन वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन में. बात की आज हमने एडवांस स्पाइन केयर एंड रिहैबिलिटेशन में. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार डॉक्टर साहब, यहाँ आप आए हैं, इतना समय आपने दिया.
0: बहुत धन्यवाद शालिनी मित्र जी आपका, आपने मौका दिया.
1: तो धन्यवाद हमें मैसेज करने के लिए. इसी तरह से जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर. स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार.
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो.

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी

दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।

श्री पीछे फरियाद ने कर ली मौत की बाजी लानी, श्री पीछे फरियाद ने कर ली मौत की बाजी लानी, लैला पीछे मजनू ने सी, लैला पीछे मजनू ने

0: सम्मान।
1: हाँ जी, प्रोग्राम चल रहा है जी हैलो जलंधर, ते मौका मिलिया इस खूबसूरत जे गाने नू सारा सुनन दा, ते मैं गाना तुहानू सारा सुना भी दिता। प्रोग्राम दे विच बहुत सारे कॉलर्स ने कॉल्स भी कीतियां ते गलबात भी साडी होई सब दे नाल, ते हुण देखदे हां जी इस प्रोग्राम दे विच आखरी कॉल जिहड़ी आ ओह किहदी लगी है ते उहनां दी की फरमाइश है ते ओह किहड़ा गाना सुनना चाह रहे ने, की उहनां दी फरमाइश है। मैं हुणे लै रही हां उहनां नू कॉल दे उत्ते। हैलो,
2: पान बीड़ी सिगर तमाकू ना शराब, हमको तो नशा है मैडम जी, आकाशवाणी का जनाब।
1: वाह जी वाह, वाह जी वाह।
2: मैडम जी नमस्कार, टाइम बहुत थोड़ा रह गया।
1: हाँ जी,
2: ते मैं तुहाडी पहली तो वेलकम, तुहानू बहुत बहुत तारियां तुहाडे लई है, क्लैपिंग करदा जी।
1: थैंक यू जी।
2: क्योंकि मैडम कल तुहानू याद कर रहे थे कि वंदना मैडम आएगी तो 10 कॉलां लगनगियां, 10 ही लगियां मैडम, मैं नोट कर रहा, एक मिस होई है विचों ते 9 तुसी कॉलां लईयां।
1: हाँ जी हाँ जी, तुसी तां पूरियां ही काउंट कीतियां होणियां चंगी तरह नाल।
2: मैडम मैं देख रहा मैं 10-10 आप ला जी, 10 ही पूरियां लगियां।
1: हाँ
2: इदा क्योंकि मैडम बहुत इंतजार करते हैं, तुसी छोटा छोटी जिदा गाने लगा के कॉलां लैंदे हो, बहुत खुश हां। अज शनिवार सीगा ते लग नहीं रहा सी फोन काफी दिन तो, मैं अज सवेरे नींबू मिर्चा बन के फोन नूं पूजा पाठ की, मैं वंदना मैडम हां, फिर जरूर लगे कॉल मेरी।
1: ठीक है जी, ठीक है, देख लो फिर सुन ली, अज तो बड़े कॉलर दी मतलब सुनी गई है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम, तुम जब आते हो ना फिर मैं 10 कॉल दी, मैं वैसे मेन सी कोई मैडम एक दी कॉल होर लग जाएगी, चलो कोई नहीं, टाइम हो गया जी,
1: इन्हें
2: बहुत है गया।
1: मैं गलबात करा।
2: हां जी हां जी, किसी नाराज भी नहीं करते, गलबात पूरी सुन दे और इज्जत मान पूरा दिन।
1: हां जी हां जी हां जी,
2: शुक्रिया जी।
1: ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
2: ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਬੰਨੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
2: ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਲਮ ਸਾਧਨਾ।
1: ਹਾਂਜੀ,
2: ਇਹ ਪਰਦਾ ਉਠਾ ਦਿਓ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਹਮਾਰਾ ਫੋਨ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਹਮ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ,
2: ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਵਾਣੀ ਦੇ ਆਰਜੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਟਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਸ ਐਗਜੈਕਟ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਵਾਂਗੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਠੀਕ 6 ਵਜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਲਵ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेश

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

हेलो हाँ नमस्कार सत श्री अकाल की हाल चाल ने हरीश हाजिर हो गया एक बार फिर तुहाडे नाल इस सफर नू हसीन हसीन बनाउण दे लई 102.7 FM रेनबो ते आ चुका मैं और तुहाडे नाल मेरा अज दा इस सफर हसीन होण वाला है बहुत ज़्यादा हसीन और अलग अलग पड़ा तो लंघदे होए असी 11 बजे तक एक दूसरे दे नाल इस तरह जुड़े रहांगे और इस वेले FM कड़ी ते 7:03 ते 40 सैकेंड हो चुके ने तो हड़ा मेरा जड़ा ए एंटरटेनमेंट दा इनफोटेनमेंट दा जड़ा सफ़र है उसका आगाज़ हो चुका है और मैं आज दा अपना पहला पड़ा फिल्मी जगत लैके हाजिर हाँ जनाब साड़ा प्रोग्राम फिल्मी दुनिया जिस विच ओ दुनिया दे बारे तुहानू मैं दसदा जिस दुनिया नू असी जानना चाहुंदे आ जिस दुनिया की चकाचौंध सानू भरमाउंदी है जिस दुनिया की चकाचौंध नू असी जानना चाहुंदे आ मानना चाहुंदे आ और उस नगरी दे विच की हुंदा की वापरदा है वह सब कुछ सानू अखबारां सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया सब तो पता लगता है बट जदों सानू कोई आप उन्हां कहानियां बारे या किसी उस कला दे खेतर दे नाल जुड़े हुए परसन दे बारे दसदा है ना उहदियां खट्टियां मिठियां यादां ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦੇ

107 एफएम रेनबो दे हरीश हाजर है जी और प्रोग्राम चल रहा है नेट वाणी। मैनू पता तुहानू नहीं लोड़ हुण किसी भी कादी महाराज पता है मैनू नहीं चाहता तुहानू कोई भी पानी ताणी चल रहा प्रोग्राम नेट वाणी मतलब गल बननी चाहिए गल बनानी आनी चाहिए है महाराज। इस तरह एक होर शख्स ने अपनी गल बना ली है केड़ा शख्स अजक इंटरनेट पर ना बहुत सारिया वीडियोज़ जड़िया ने फनी वीडियोज़ बड़ी वायरल होंदिया ने और सानू ज़्यादा पसंद आदियां ने असी अगे शेयर करते हैं फॉरवर्ड करते हैं कमेंट करते हैं लाइक्स करते हैं और अपन वीडियोज़ भी कभी कभी पा के कभी कभी नहीं मतलब अक्सर पाने फोटो शोटोज़ पाने और असी कहने चाहते हाँ सारे साड़िया फोटोज़ में लाइक करन कमेंट करन और जदों कोई नहीं करता तो फिर थोड़ा जहा दिल दुखदा है ना। मैनू पता है मैं समझदा इस दुख तो चंगी तरह वाकफ हाँ मैं भी क्योंकि हाँ मैं भी इदा दे मतलब मैं भी वीडियोज़ पाना ना हूँ की दसा तुहानू महाराज। खैर वीडियोज़ की गल कर रहा सी एक शख्स जी अजक इंटरनेट पर तुम वीडियोज़ बड़िया देखते हो और कुछ स्क्रिप्टड होंदिया ने कुछ ज़्यादातर स्क्रिप्टड ही होंदिया ने और ए आई के नाल भी बनिया बहुत सारी वीडियोज़ अजक मतलब खैर ए आई की गल बाद करते हैं आप वीडियोज़ जिस विच बॉस कहिंदा है कि मैं तुहानू एक हफ्ते की छुट्टी देंगा जिहड़ा शख्स मेरा जवाब दे देगा मेरी गल का मतलब मेरे सवाल का जवाब दे देगा। तो बंदा एक तुहाडे वर्गा बड़ा चलाक सी बॉस ने जदों एक गल की कि जिहड़ा मेरे सवाल का दे देगा जवाब उन्हूं मिलेगी एक हफ्ते की छुट्टी और कोई पैसा नहीं कटांगा सगों उन्हूं इनाम दिता जाएगा। बंदा गेंद दिंदा सट थले और बॉस कहिंदा कि आ किने सिटी हूँ टैक्नीकली तो सवाल का जवाब उन्हें देना सी देता बॉस गया फस तो कहिंदा दियो महाराज हूँ एक हफ्ते की छुट्टी जवाब बिल्कुल सही दिता मैं इदा महाराज चलाक मतलब लोगों की कमी नहीं हैगी क्रिएटिव बनना चाहिए और क्रिएटिविटी जी है ना वो लुकी नहीं रहनी चाहिए कभी कभी असी लुका के रखते हैं बट अजक हर शख्स की क्रिएटिविटी निकल रही है महाराज सोशल मीडिया से की नहीं असी वेख रहे ओ चीज़ा जिड़िया ने असी वेख रहे हैं कोई खाने की वीडियो बनाने की नहीं गल कर रहे महाराज खाने की गल कर रहे हैं कोई घट खाँदा वो वीडियो कोई ज़्यादा खाँदा वो वीडियो कोई उल्टा होके खाँदा वो वीडियो कोई मतलब लेट के खाँदा वो वीडियो कोई मैं कहना मुठ्ठा भर भर के खाँदा भर भर के खाँदा मुँह च पाँदा तुन्नी जाता वो वीडियो की नहीं असी सोशल मीडिया से वेखते जो तुसी अपने अखां बंद करके इमेजिन करो ना तो

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे।

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने अज पछमी बंगाल के नवे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुक ली है। तमिलनाडु च सी जोसफ विजय की अगवाई वाली टीवीके ने दावा किया है कि उन्होंने पार्टी नू राज नवी सरकार बनाने 120 विधायकों का समर्थन मिल गया है। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा नू मनी लॉन्डरिंग संबंधी मामले च चंडीगढ़ तो गिरफ्तार किया है। भारत ने उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टापू तो MRV सिस्टम नाल लैस उन्नत अग्नि मिजाइल का सफल परीक्षण किया। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के जेतुआ का ऐलान कर दिया है। यह पुरस्कार देश भर चो चुनिया गई 42 पंचायतों दिते जाएंगे।

कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश ये मैसेज मेरे तक पहुँचा रहे ने। तो इन्हों की फरमाइश इस वेले पूरी हो चुकी है, तो असी प्ले भी कर देने। फिर आज सुनते हैं मुकेश जी की आवाज़ के ब्रिलियंट सोंग।

दिल चाहता है प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो हरीश दे नाल और फरमाइशां तुहाडियां मैं पूरियां कर रहा 9855-10-10-27 नंबर साडा वट्सअप नंबर इस नंबर ते तुसी वी जेकर नहीं भेजी फरमाइश फटाफट भेज दिओ मैसेज पढ़दे हां अगला जी आदरणीय प्रसारक जी सर प्रेम नमस्कार फिल्म सूरज और चंदा गीत

तेरे नाम का दीवाना तेरे घर, अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आ जाओ फिर तुहाडी पसंदा रफ़ी साहब की आवाज़ दे विच्चे ट्रैक सुनते हैं। तेरे ना नहीं, रफ़ी साहब की आवाज़ च।

107 FM रेनबो ते थोड़ी इन्फॉर्मेशन दा प्रोग्राम दिल चाहता चल रहा और फटाफट फरमाइश एक होर पढ़ते हैं जी। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। फिल्म आशा गाना आशाओं के सावन में मार हरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी शहनाज अब्बासी नवेद हसन अब्बासी सुहेल हसन अब्बासी रसीद वारसी अनम अब्बासी यसफ अब्बासी सिकंदरा राव से मुनीब अब्बासी आपका तहे दिल से शुक्रिया। एक और मैसेज पढ़ते हैं जी। राम राम जी कोई भी गीत

जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी, हरीश जी हाथ जोड़कर विनती करते हैं एक फरमाइश के साथ। ये फरमाइश जड़ी है एक ही इस वेले पूरी हो सकती है जी। 4-5 मैसेज अन्य सॉन्ग वाले ज़रूर शामिल करें, शायद मेरी रिक्वेस्ट बेकार जाएगी। मैसेज थोड़ा हुण पढ़िया गया जी, मैसेज भेजने के लिए थैंक यू। और फटाफट असी ये ट्रैक प्ले करते हैं, इस प्रोग्राम को इतने ख़त्म करते हैं, और इस प्रोग्राम का अकेला ट्रैक आशाओं के सावन में प्ले है जी। मैं मिलदा नेक्स्ट

मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर गए थे। मैं आज भी उन्हीं परिस्थितियों में हूँ जहाँ तुम जिनमें तुम मुझे छोड़कर गए थे। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके साथ लेकर शाम गजल। इस खूबसूरत रात नूं होर भी ज्यादा खूबसूरत और होर भी ज्यादा इश्कमय बनाउण दे लई हाजिर हां मैं, और उम्मीद है कि ये रात एक गहराउं दी रात होर भी खूबसूरत होएगी इन्हां खूबसूरत खूबसूरत गजलां दे नाल जो

सुबह आंख खुलते ही पहला ख्याल तुम्हारा आता है। जब भी दोस्तों के बीच होता हूं तो तुम्हें ही याद करता हूं। कोई धुन कान में घुल जाए तो तुम्हें सोचता हूं। चांद को देखूं

या फिर कोई फिल्म देखूं या कोई किताब पढूं, हर कहानी में हर अल्फाज में मुझे सिर्फ तुम नजर आते हो। और रात को सोने जाऊं तो रोज सपनों में तुम आते हो। ये कैसा इश्क है, ये कैसा इश्क है जो तुम फरमा रहे हो। मेरे ना होकर भी क्यों, मेरे ना होकर भी क्यों तुम मेरे होते जा रहे हो। ये कैसा इश्क है जिसे मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। बिल्कुल।

कोई पास ना भी हो तो भी वो पास हो। किसी से कुछ कह रहे हो हम तो उसे सुनाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, लेकिन हम उसकी मौजूदगी महसूस कर रहे हो। गहराई तो देखिए इस अधूरेपन की। वो शख्स पास नहीं है, फिर भी रग रग में मौजूद है। उसकी चाहत में हम कुछ यूं बंधे हैं कि वो साथ भी नहीं है और हम अकेले भी नहीं है। ये है इस इश्क की अदायगी, इसका असर।

सोचता हूँ मैंने इतनी मोहब्बत देनी है तुम्हें कि हर किसी की तकदीर तुमसे जलने लगे, तुम्हारे हिस्से में ऐसा इश्क लिखूं कि लोग ऊपर वाले से तुमसा नसीब मांगे, हर कमी को अपने प्यार से भर दूं, हर दर्द को अपनी बाहों में समेट लूं। अगर कभी दुनिया तुम्हें लगे तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी हो। शायद ये मेरा एक तरफा प्यार तुम्हारे लिए परफेक्ट ना हो, पर इतना जरूर होगा कि तुम एक दिन मुस्कुराकर कहोगी, किसी ने मुझे सच में बेइंतहा चाहा था, किसी ने मुझे बेइंतहा चाहा था और मुझे उसका पता ही नहीं था।

मीलों की दूरी पर हो तुम, पर दिल के सबसे करीब भी हो तुम। एक शहर ना सही, अलग रास्ते सही, पर हर दिन मेरी दुनिया में शामिल हो तुम। कभी मन करता है तुम अपनी तस्वीर से निकलकर आ जाओ और तुम्हारे पास बैठकर बस खामोशी में मुस्कुराऊं। यकीन है ये दूरियां एक दिन हार जाएंगी और उस दिन मैं तुम्हारे पास होऊंगा और आंखों से बहते होंगे आंसू, पर उम्मीद है कि वो आंसू खुशी के हों और तुम मेरे पास हो, मेरे साथ।

एक प्यार का नगमा है जिसका आगाज हो चुका है और हरीश नाल है तुहाडे और उम्मीद है कि इस खूबसूरत रात को खूबसूरत होर बना रहा मैं इस सफ़र के नाल शामे गज़ल तो बाद एक प्यार का नगमा है प्रोग्राम के नाल मैं नाल ही रहांगा तुहाडे ठीक 11 बजे तक ये साडा सिलसिला इस तरह चलता रहेगा और रेट्रो सोंग्स का दौर नगमिया का दौर Old is gold. Hurry up, start.

मोह नहीं है ना, मोह नहीं है सो तुझे बांधा नहीं है, खुद बंध गए तुमसे। तुझे पाने की जिद नहीं है, बस तुझ में खुद को खो देना ही काफी लगा। तुझे थामा नहीं सिर्फ महसूस किया है, तेरे बिना भी तुझ में ही जिया है। ये बंधन किसी डोर से नहीं एहसासों से जुड़ा है, जहां तू भी आजाद है और मैं भी, और मैं बस तेरा हूं, सिर्फ तेरा।

मेरे ख्वाबों की दुनिया में कोई दूरी नहीं, मेरे ख्वाबों की दुनिया में कोई दूरी नहीं, कोई दीवार नहीं, वहां तुम सिर्फ मेरे हो, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के। हकीकत भले ही हमें दूर रखे, पर ख्यालों में तुम हर बार मेरे पास लौट आते हो। इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि अगली बार मेरी ये कल्पनाएं हकीकत बन जाए। क्या पता, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये बन जाएंगे हकीकत?

हमारी अब मुलाकात नहीं होती, मुझे पता है अब बात भी नहीं होती, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि मैं तुझे सिर्फ आंखों से ही देखूं। तेरी याद का आना भी तो तेरे दीदार से कम नहीं है ना। मेरे लिए तो वही दीदार है, मेरे लिए तो वही हंसी रात है, मेरे लिए तो वही तुम हो, तेरी याद।

कभी कभी किस्मत भी अजीब खेल खेलती है ना। वो तुम्हें उससे मिला देती है जिसे तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे, मगर जगह और वक्त अनुकूल नहीं होता। फिर वही किस्मत उसे तुम्हारा होने नहीं देती और तुम बस प्रार्थना करते रह जाते हो कि शायद किसी और जन्म में वक्त किसी और जन्म में वक्त हमारे अनुकूल हो, हमारे साथ हो, हमारे पास हो, हमारे दोनों के अनुकूल हो, परिस्थितियां साथ हों और हम दोनों पास हों किसी और जन्म में।

जिन राहों पर तुम्हारे साथ चला हूं, अचानक दिल रुक सा जाता है जैसे तुम अभी वहां से आओगे और आवाज दोगे उन्हीं राहों पर। कहते हैं समय के साथ सब भूल जाता है, पर उन्हें कैसे समझाऊं, कुछ लोग कभी भुलाए नहीं जाते, वो तो दिल में बस जाते हैं सांसों की तरह, और जब तक सांस चलती है तब तक उनका नाम भी साथ साथ चलता है। और वो लोग कभी भी इस दिल से जाते नहीं हैं, कभी भी।

एक प्यार का नगमा है। प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो हरीश दे नाल, और इस प्रोग्राम नूं इत्थे खत्म करन दा वेला आ गया, और जिंदगी दे सफर दे विच तुहाडे नाल दोबारा मुलाकात होएगी। इस हसीन सफर नूं लै के दोबारा हाजिर होवांगा मैं। तद तक लई मैनूं दिओ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।